0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो चौथवें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुत होता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह।

0: समय पोपलियो चौथवें ने दूसरों को क्षमा करने की शक्ति पर चिंतन किया। ख्रिस्त ने हमें माफ किया है ताकि हम भी नफरत, विभाजन और हिंसा का सामना कर सकें और शांति एवं प्यार को बढ़ावा दे सकें। वैटिकन स्थित संत पेत्रस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 14 सितंबर को पोप लियो चौथवें ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
1: Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana, il perdono.
0: आज का सुसमाचार पाठ हमें क्षमाशीलता के बारे बताता है, जो ख्रिस्तीय जीवन की एक बुनियादी विशेषता है। यीशु ने क्रूस पर भी क्षमाशीलता का पाठ पढ़ाया और इसका उदाहरण दिया, जहां उन्होंने अपने अत्याचारियों के लिए पिता से प्रार्थना की,
1: Perdona loro perché non sanno quello che fanno.
0: पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। संत पापा ने कहा, आज के पाठ में पेत्रुस यीशु से यही सवाल पूछते हैं, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक। पोप ने कहा कि उनके शब्द एक उदार हृदय को दिखाते हैं, क्योंकि बाइबल में 7 संख्या पूर्णता की निशानी है और 7 बार माफ करने का मतलब है बहुत अधिक माफ करना। हालांकि यीशु का जवाब और भी आगे जाता है,
1: Non ti dico fino a 7 volte, afferma.
0: मैं तुमसे 7 बार नहीं बल्कि 70 × 7 बार कहता हूँ। दूसरे शब्दों में सभी सीमाओं से परे हमेशा माफ करना। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए वे एक नौकर का दृष्टांत बताते हैं, जिस पर उसके मालिक का एक बड़ा कर्ज था जिसे चुकाना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। हालांकि मालिक उसका कर्ज दया करके पूरी तरह माफ कर देता है, लेकिन दूसरी ओर यह नौकर अपने साथी सेवकों में से किसी पर भी वैसी दया नहीं दिखाता, जिसके कारण उसे फटकारा जाता और कड़ी सजा मिलती है। संत पापा ने कहा, इन शब्दों के साथ यीशु हमें याद दिलाते हैं कि उफार और क्षमाशीलता हमारे अस्तित्व की नींव हैं।
1: Tutto ci è dato da Dio per puro amore.
0: सभी चीजें हमें ईश्वर द्वारा विशुद्ध प्रेम से दी गई हैं और हम में से कोई भी इस भलाई का जवाब देने में पूर्ण होने का दावा नहीं कर सकता। इस कारण से निस्वार्थ होना, जो हमारे अस्तित्व का स्रोत है, हमारे जीवन के लिए भी सबसे अच्छा नियम है। हम इसे हर दिन अनुभव करते हैं। क्षमा अपरिहार्य है और इसके बिना हम शांति

0: क्षमा ही एक शीतल हवा की तरह सबसे घने बादलों को भी तब तक बहा ले जाती है जब तक कि सूर्य एक बार फिर चमक ना जाए। संत पेत्रुस ने स्वयं अपने जीवन में कई बार इसका अनुभव किया, खासकर जब दुख भोग के दौरान यीशु को त्यागने और छोड़ने के बाद वे झील के किनारे जी उठे प्रभु से मिले और उन्होंने खुद को सिर्फ एक सवाल पूछते सुना।
1: सिमोने, मी आमी, उनीता आउन इन्वीतो, सेग्विमी।
0: सिमोन, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? इसके साथ एक निमंत्रण भी था, मेरे पीछे चले आओ, जो वही निमंत्रण था जिसको उनकी पहली मुलाकात में दिया गया था। ऐसा लगा जैसे कुछ भी ना हुआ हो। यही प्यार जो माफ करता और चंगा करता है, प्रथम प्रेरितों के लिए उनके मिशन की पुष्टि का निशान होगा। इसके बाद संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा, इसलिए आइए हम दया की माता कुंवारी मरियम से प्रार्थना करें कि वे हमें माफ करने में मदद करें, हमेशा माफ करने, तब भी जब पहला कदम उठाना मुश्किल हो, और हिम्मत एवं लगन के साथ प्यार की शांत एवं चंगा करने वाली रोशनी फैलाएं जो नफरत पर जीत हासिल करती है और सभी प्रकार के गुस्से को खत्म कर देती है। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरिती का आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini, nunciavit Mariae,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitat in nominis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने 25 साल पहले 11 सितंबर को अमेरिका के ट्विन टावर पर हुए हमले को याद किया और इससे प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा,
1: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa.
0: प्यारे भाइयों एवं बहनों, दो दिन पहले अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों की 25वीं सालगिरह थी। मैं उन लोगों के लिए अपनी प्रार्थनाएं दोहराता हूं जिन्होंने अपनी जान गंवाई और जो उस दुखद दिन के जख्म को सह रहे हैं। ऐसे समय में जब लड़ाई और हिंसा हमारे कितने सारे भाइयों और बहनों को परेशान कर रही है, मैं सभी को यह प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूं कि प्रभु दुनिया को अपनी शांति का वरदान दें। पोप ने सभी विश्वासियों से शांति के लिए प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा,
1: ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace.
0: 25 साल पहले हुई दुखद घटना की याद हमें शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीकृत करने के लिए प्रेरित करती है, सबसे पहले और सबसे बढ़कर प्रार्थना के द्वारा, जिसको हम कुंवारी मरियम की मध्यस्थता को सपोर्ट करते हैं। तत्पश्चात संत पापा ने सभी विश्वासियों एवं तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा,
1: ed ora saluto con affetto tutti voi, Romani e Pellegrini.
0: मैं आप सभी रोमवासी एवं तीर्थयात्रियों का अभिवादन करता हूँ और अंत में उन्होंने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: A tutti voi, auguro una buona domenica.

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज सोमवार 14 सितंबर को संत पापा लियो 14वें अपना 71वां जन्मदिन मना रहे हैं। 25 साल पहले आज ही के दिन वे संत अगुस्टीन धर्म समाज के प्रायर जनरल के तौर पर चुने गए थे। जन्मदिन पर दुनिया भर से वाटिकन में बधाई संदेश और शुभकामनाएं आ रही हैं। इटालियन धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने इटली के स्थानीय कलीसिया की ओर से बधाई संदेश भेजा और संत पापा की सेवा के लिए उनका धन्यवाद किया। इटालियन धर्माध्यक्षों ने याद दिलाया कि संत पापा लियो ने कलीसिया के जीवन में सुसमाचार को सबसे जरूरी प्राथमिकता और विश्वास को यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाने पर जोर दिया था। संत पापा परमाध्यक्ष चुने जाने के बाद बिना हथियारों वाली और हथियार छोड़ने पर मजबूर करने वाली शांति की बात करने के बाद से अपनी प्रेरितिक यात्राओं, मुलाकातों और सार्वजनिक भाषणों में बार बार शांति और मेल मिलाप पर जोर दिया है। अपने कार्यकाल के पहले साल में संत पापा ने 400 से ज्यादा बार शांति और मेल मिलाप का जिक्र किया, साथ ही एकता, बातचीत, उम्मीद और मानव गरिमा के बारे में भी अक्सर बातें की। उनकी पहली प्रेरितिक यात्रा तुर्की और लेबनान थी। निचेया में पहली ख्रीस्तीय एकता वर्धक सभा की 1700वीं सालगिरह के मौके पर उन्होंने ख्रिस्तियों की एकता पर जोर दिया, जबकि लेबनान में उन्होंने बातचीत और शांति पर ध्यान दिया। 6 जनवरी 2026 को उन्होंने संत पेत्रुस महागिरजाघर के पवित्र द्वार को बंद करके संत पापा फ्रांसिस द्वारा शुरू किए गए जुबली वर्ष 2025 का समापन किया। उन्होंने पहले विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर भी बात की थी और इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी को मानव गरिमा, आजादी, जिम्मेदारी और भलाई के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने दिलेक्सी ते को भी पूरा किया, जो गरीबों के प्रति प्रेम पर संत पापा फ्रांसिस का शुरू किया गया एक प्रेरितिक संदेश था। उन्होंने जुलाई में लंपेदूसा की अपनी यात्रा और प्रवासियों से मुलाकात के दौरान इस विषय पर भी बात की थी। 14 सितंबर 1955 को शिकागो में जन्मे संत पापा लियो 14वें अपने 72वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें उनके कार्यकाल के काम के मुख्य विषय साफ तौर पर तय है, शांति, एकता और मानव गरिमा की रक्षा। उधर एड टू द चर्च इन नीड, जरूरतमंद कलीसिया की मदद संस्था ने रोम में एक सभा आयोजित की और ऑस्ट्रिया के मोनसिन्योर फेडरिक बेचीना को परम धर्मपीठीय संस्था का नया समन्वयक चुना। लगभग 80 साल पहले शुरू हुई संस्था एड टू द चर्च इन नीड ACN यानी जरूरतमंद कलीसिया की मदद संस्था 140 से ज्यादा देशों में काम कर रही है। यह संस्था 1300 से ज्यादा धर्म प्रांतों के साथ मिलकर काम करती है और हर साल 5000 से ज्यादा परियोजनाओं में मदद करती है। इसके 24 देशों में राष्ट्रीय विभाग भी हैं, जो संस्था के आध्यात्मिक जीवन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। अपने चुनाव के बाद वाटिकन न्यूज से बातें करते हुए मोनसिन्योर बेचीना ने संत पापा लियो 14वें के ACN के साथ लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को याद किया। जब वे पेरू में धर्माध्यक्ष थे, तब वे हमारे परियोजना पार्टनर थे, इसलिए उन्होंने हमारे साथ काम किया। वे चाहते हैं कि हम जिम्मेदारी लें, खासकर धर्म प्रचार के क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि हम जरूरतमंद स्थानीय कलीसिया और विश्वासियों की मदद करते हैं। हमारे मिशन का एक हिस्सा उन लोगों और कलीसियाओं की कहानी बताना भी है जिन्हें उनके विश्वास के कारण सताया जाता है। साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सताई गई कलीसिया के पास अपनी अनूठी खूबियां और संपत्तियां हैं जिन्हें वे हमारे साथ साझा करते हैं। उनमें उम्मीद है। यह संस्था अफ्रीका, वेनेजुएला, कोलंबिया और दूसरे देशों में भी स्थानीय कलीसियाओं की मदद करती हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं, गृह युद्ध और ऐसे दूसरे संकटों से प्रभावित हैं जिन्हें तुरंत मदद की जरूरत होती है। उधर सहयोग को मजबूत करने और डिजिटल प्रचार के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने हेतु
सौ से अधिक संचारकों और सामग्री निर्माताओं को एक साथ लाने वाली पहली एशियाई कैथोलिक डिजिटल मिशनरी सभा मनीला में संपन्न हुई। यह सभा 10 से 13 सितंबर को फिलीपींस के क्विजोन सिटी में रेडियो वेरितास एशिया कैंपस में आयोजित की गई थी। प्रभावक से गवाह तक एशिया के डिजिटल मिशन के लिए सिनोडल मार्ग थीम के तहत आयोजित सभा को प्रेरितों के इन शब्दों से प्रेरणा मिली। हमने जो देखा और सुना है उसके बारे में बात किए बिना हम नहीं रह सकते। इस सभा ने प्रतिभागियों को सिर्फ ऑनलाइन कंटेंट बनाने से आगे बढ़कर आपसी जुड़ाव और आस्था के मिशनरी पहलू से जुड़े गवाह बनने के लिए प्रोत्साहित किया। इसने पूरे महाद्वीप में डिजिटल तरीके से क्रिश्चियन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तैयारी और एक साझा सोच को भी बढ़ावा दिया। संत पापा लियो 14वें ने वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन द्वारा हस्ताक्षरित एक संदेश भेजा, जिसमें प्रतिभागियों को अपने डिजिटल सामग्री में यीशु मसीह के सच्चे गवाह के तौर पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। फिलीपींस के कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष और लीपा के महाधर्माध्यक्ष गिलबर्ट गारसेरा ने उद्घाटन मिस्सा समारोह की अध्यक्षता की। प्रवचन में उन्होंने कहा, हम यीशु की एशिया में जोर जोर से चिल्लाकर नहीं बल्कि एशिया के करीब आकर वहां के लोगों की बात सुनकर अपने लोगों के साथ चलकर उनकी सेवा करके और प्यार से यीशु के प्रेम को सुनाकर और महसूस करा कर लाते हैं। एफएबीसी के सामाजिक संचार कार्यालय के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष मार्सेलिनो ने अपने मुख्य भाषण में कहा कि कलीसिया को यह समझना होगा कि लोग पहले से ही डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं। उन्होंने 5 जरूरी बदलावों के बारे में बताया। कंटेंट से मुलाकात तक, दर्शकों से समुदाय तक, वायरल होने से वफादारी तक, प्रतियोगिता से सहयोग तक और प्रभाव से गवाही तक। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया एक स्टार्टर शुरुआती चीज है और यूखरिस्त मंजिल है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो चौथवें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुत होता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह।

0: में पोप लियो 14वें ने दूसरों को क्षमा करने की शक्ति पर चिंतन किया। ख्रिस्त ने हमें माफ किया है ताकि हम भी नफरत, विभाजन और हिंसा का सामना कर सकें और शांति एवं प्यार को बढ़ावा दे सकें। वैटिकन स्थित संत पेत्रस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 14 सितंबर को पोप लियो 14वें ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
1: Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana, il perdono.
0: आज का सुसमाचार पाठ हमें क्षमाशीलता के बारे बताता है, जो ख्रिस्तीय जीवन की एक बुनियादी विशेषता है। यीशु ने क्रूस पर भी क्षमाशीलता का पाठ पढ़ाया और इसका उदाहरण दिया, जहां उन्होंने अपने अत्याचारियों के लिए पिता से प्रार्थना की,
1: Perdona loro perché non sanno quello che fanno.
0: पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। संत पापा ने कहा, आज के पाठ में पेत्रुस यीशु से यही सवाल पूछते हैं, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक। पोप ने कहा कि उनके शब्द एक उदार हृदय को दिखाते हैं, क्योंकि बाइबल में 7 संख्या पूर्णता की निशानी है और 7 बार माफ करने का मतलब है बहुत अधिक माफ करना। हालांकि यीशु का जवाब और भी आगे जाता है,
1: Non ti dico fino a 7 volte, afferma.
0: मैं तुमसे 7 बार नहीं बल्कि 70 × 7 बार कहता हूँ। दूसरे शब्दों में सभी सीमाओं से परे हमेशा माफ करना। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए वे एक नौकर का दृष्टांत बताते हैं, जिस पर उसके मालिक का एक बड़ा कर्ज था जिसे चुकाना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। हालांकि मालिक उसका कर्ज दया करके पूरी तरह माफ कर देता है, लेकिन दूसरी ओर यह नौकर अपने साथी सेवकों में से किसी पर भी वैसी दया नहीं दिखाता, जिसके कारण उसे फटकारा जाता और कड़ी सजा मिलती है। संत पापा ने कहा, इन शब्दों के साथ यीशु हमें याद दिलाते हैं कि उफार और क्षमाशीलता हमारे अस्तित्व की नींव हैं।
1: Tutto ci è dato da Dio per puro amore.
0: सभी चीजें हमें ईश्वर द्वारा विशुद्ध प्रेम से दी गई हैं और हम में से कोई भी इस भलाई का जवाब देने में पूर्ण होने का दावा नहीं कर सकता। इस कारण से निस्वार्थ होना, जो हमारे अस्तित्व का स्रोत है, हमारे जीवन के लिए भी सबसे अच्छा नियम है। हम इसे हर दिन अनुभव करते हैं। क्षमा अपरिहार्य है और इसके बिना हम शांति से नहीं रह सकते। देर सवेर संघर्ष, आरोप, दुर्भावना और प्रतिशोध के कार्य हमारे दिलों में और लोगों के बीच उभरते हैं और ये कार्य रिश्तों को नष्ट कर देते हैं, परिवारों को विभाजित करते और युद्ध उत्पन्न करते हैं। केवल क्षमा ही हमें स्वतंत्र करती और प्रकाश को पुनर्स्थापित करती है। जहां मानव की भौतिक और नैतिक गरीबी ने क्षितिज को अंधकारमय कर दिया है एवं मार को अनिश्चित बना दिया है, संत पापा ने कहा,
1: Il perdono, come un buon vento, spazza via anche le nubi più fitte.
0: क्षमा ही एक शीतल हवा की तरह सबसे घने बादलों को भी तब तक बहा ले जाती है जब तक कि सूर्य एक बार फिर चमक ना जाए। संत पेत्रुस ने स्वयं अपने जीवन में कई बार इसका अनुभव किया, खासकर जब दुख भोग के दौरान यीशु को त्यागने और छोड़ने के बाद वे झील के किनारे जी उठे प्रभु से मिले और उन्होंने खुद को सिर्फ एक सवाल पूछते सुना,
1: Simone, mi ami, unita a un invito, seguimi.
0: सिमोन, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? इसके साथ एक निमंत्रण भी था, मेरे पीछे चले आओ, जो वही निमंत्रण था जिसको उनकी पहली मुलाकात में दिया गया था। ऐसा लगा जैसे कुछ भी ना हुआ हो। यही प्यार जो माफ करता और चंगा करता है, प्रथम प्रेरितों के लिए उनके मिशन की पुष्टि का निशान होगा। इसके बाद संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा, इसलिए आइए हम दया की माता कुंवारी मरियम से प्रार्थना करें कि वे हमें माफ करने में मदद करें। हमेशा माफ करने, तब भी जब पहला कदम उठाना मुश्किल हो, और हिम्मत एवं लगन के साथ प्यार की शांत एवं चंगा करने वाली रोशनी फैलाएं, जो नफरत पर जीत हासिल करती है और सभी प्रकार के गुस्से को खत्म कर देती है। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरित का आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini, nunciavit Mariae,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitat in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने 25 साल पहले 11 सितंबर को अमेरिका के ट्विन टावर पर हुए हमले को याद किया और इससे प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा,
1: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa.
0: प्यारे भाइयों एवं बहनों, दो दिन पहले अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों की 25वीं सालगिरह थी। मैं उन लोगों के लिए अपनी प्रार्थनाएं दोहराता हूं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई और जो उस दुखद दिन के जख्म को सह रहे हैं। ऐसे समय में जब लड़ाई और हिंसा हमारे कितने सारे भाइयों और बहनों को परेशान कर रही है, मैं सभी को यह प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूं कि प्रभु दुनिया को अपनी शांति का वरदान दें। पोप ने सभी विश्वासियों से शांति के लिए प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा,
1: ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace.
0: 25 साल पहले हुई दुखद घटना की याद हमें शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीकृत करने के लिए प्रेरित करती है, सबसे पहले और सबसे बढ़कर प्रार्थना के द्वारा, जिसको हम कुंवारी मरियम की मध्यस्थता को सपोर्ट करते हैं। तत्पश्चात संत पापा ने सभी विश्वासियों एवं तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा,
1: ed ora saluto con affetto tutti voi, Romani e Pellegrini.
0: मैं आप सभी रोमवासी एवं तीर्थयात्रियों का अभिवादन करता हूँ। और अंत में उन्होंने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: A tutti voi, auguro una buona domenica.

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज सोमवार 14 सितंबर को संत पापा लियो 14 में अपना 71वां जन्मदिन मना रहे हैं। 25 साल पहले आज ही के दिन वे संत अगुस्टीन धर्म समाज के प्रायर जनरल के तौर पर चुने गए थे। जन्मदिन पर दुनिया भर से वाटिकन में बधाई संदेश और शुभकामनाएं आ रही हैं। इटालियन धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने इटली के स्थानीय कलीसिया की ओर से बधाई संदेश भेजा और संत पापा की सेवा के लिए उनका धन्यवाद किया। इटालियन धर्माध्यक्षों ने याद दिलाया कि संत पापा लियो ने कलीसिया के जीवन में सुसमाचार को सबसे जरूरी प्राथमिकता और विश्वास को यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाने पर जोर दिया था। संत पापा परमाध्यक्ष चुने जाने के बाद बिना हथियारों वाली और हथियार छोड़ने पर मजबूर करने वाली शांति की बात करने के बाद से अपनी प्रेरितिक यात्राओं, मुलाकातों और सार्वजनिक भाषणों में बार बार शांति और मेल मिलाप पर जोर दिया है। अपने कार्यकाल के पहले साल में संत पापा ने 400 से ज्यादा बार शांति और मेल मिलाप का जिक्र किया। साथ ही एकता, बातचीत, उम्मीद और मानव गरिमा के बारे में भी अक्सर बातें की। उनकी पहली प्रेरितिक यात्रा तुर्की और लेबनान थी। निचेया में पहली ख्रिस्तीय एकता वर्धक सभा की 1700वीं सालगिरह के मौके पर उन्होंने ख्रिस्तियों की एकता पर जोर दिया, जबकि लेबनान में उन्होंने बातचीत और शांति पर ध्यान दिया। 6 जनवरी 2026 को उन्होंने संत पेत्रुस महागिरजाघर के पवित्र द्वार को बंद करके संत पापा फ्रांसिस द्वारा शुरू किए गए जुबली वर्ष 2025 का समापन किया। उन्होंने पहले विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर भी बात की थी और इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी को मानव गरिमा, आज़ादी, जिम्मेदारी और भलाई के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने डिलेक्सी ते को भी पूरा किया, जो गरीबों के प्रति प्रेम पर संत पापा फ्रांसिस का शुरू किया गया एक प्रेरितिक संदेश था। उन्होंने जुलाई में लंपेदूसा की अपनी यात्रा और प्रवासियों से मुलाकात के दौरान इस विषय पर भी बात की थी। 14 सितंबर 1955 को शिकागो में जन्मे संत पापा लियो 14वें अपने 72वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें उनके कार्यकाल के काम के मुख्य विषय साफ तौर पर तय है, शांति, एकता और मानव गरिमा की रक्षा। उधर एड टू द चर्च इन नीड, जरूरतमंद कलीसिया की मदद संस्था ने रोम में एक सभा आयोजित की और ऑस्ट्रिया के मोनसिनियोर फेडरिक बेचीना को परम धर्म पीठ संस्था का नया समन्वयक चुना। लगभग 80 साल पहले शुरू हुई संस्था एड टू द चर्च इन नीड ACN यानी जरूरतमंद कलीसिया की मदद संस्था 140 से ज्यादा देशों में काम कर रही है। यह संस्था 1300 से ज्यादा धर्म प्रांतों के साथ मिलकर काम करती है और हर साल 5000 से ज्यादा परियोजनाओं में मदद करती है। इसके 24 देशों में राष्ट्रीय विभाग भी हैं, जो संस्था के आध्यात्मिक जीवन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। अपने चुनाव के बाद वाटिकन न्यूज से बातें करते हुए मोनसिनियोर बेचीना ने संत पापा लियो 14वें के ACN के साथ लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को याद किया। जब वे पेरू में धर्माध्यक्ष थे तब वे हमारे परियोजना पार्टनर थे, इसलिए उन्होंने हमारे साथ काम किया। वे चाहते हैं कि हम जिम्मेदारी लें, खासकर धर्म प्रचार के क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि हम जरूरतमंद स्थानीय कलीसिया और विश्वासियों की मदद करते हैं। हमारे मिशन का एक हिस्सा उन लोगों और कलीसियाओं की कहानी बताना भी है जिन्हें उनके विश्वास के कारण सताया जाता है। साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सताई गई कलीसिया के पास अपनी अनूठी खूबियां और संपत्तियां हैं जिन्हें वे हमारे साथ साझा करते हैं। उनमें उम्मीद है। यह संस्था अफ्रीका, वेनेजुएला, कोलंबिया और दूसरे देशों में भी स्थानीय कलीसियाओं की मदद करती हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं, गृह युद्ध और ऐसे दूसरे संकटों से प्रभावित हैं जिन्हें तुरंत मदद की जरूरत होती है। उधर सहयोग को मजबूत करने और डिजिटल प्रचार के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने हेतु
सौ से अधिक संचारकों और सामग्री निर्माताओं को एक साथ लाने वाली पहली एशियाई कैथोलिक डिजिटल मिशनरी सभा मनीला में संपन्न हुई। यह सभा 10 से 13 सितंबर को फिलीपींस के क्विजोन सिटी में रेडियो वेरितास एशिया कैंपस में आयोजित की गई थी। प्रभावक से गवाह तक एशिया के डिजिटल मिशन के लिए सिनोडल मार्ग थीम के तहत आयोजित सभा को प्रेरितों के इन शब्दों से प्रेरणा मिली। हमने जो देखा और सुना है उसके बारे में बात किए बिना हम नहीं रह सकते। इस सभा ने प्रतिभागियों को सिर्फ ऑनलाइन कंटेंट बनाने से आगे बढ़कर आपसी जुड़ाव और आस्था के मिशनरी पहलू से जुड़े गवाह बनने के लिए प्रोत्साहित किया। इसने पूरे महाद्वीप में डिजिटल तरीके से क्रिस्तीय धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तैयारी और एक साझा सोच को भी बढ़ावा दिया। संत पापा लियो 14वें ने वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन द्वारा हस्ताक्षरित एक संदेश भेजा, जिसमें प्रतिभागियों को अपने डिजिटल सामग्री में यीशु मसीह के सच्चे गवाह के तौर पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

अध्यक्ष मार्सेलिनो ने अपने मुख्य भाषण में कहा कि कलीसिया को यह समझना होगा कि लोग पहले से ही डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं। उन्होंने 5 जरूरी बदलावों के बारे में बताया, कंटेंट से मुलाकात तक, दर्शकों से समुदाय तक, वायरल होने से वफादारी तक, प्रतियोगिता से सहयोग तक और प्रभाव से गवाही तक। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया एक स्टार्टर शुरुआती चीज है और यूखरिस्त मंजिल है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाउदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा।
1: मतलब, हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं,
0: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद, प्रभु यीशु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है।
0: मतलब हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु येसु को क्रूस पर ठोंका जाता है,
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता
1: हम पर दया कर,
0: पवित्र आत्मा ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: संत मरियम
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वर की पवित्र माँ
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्त की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वरीय कृपा की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति निर्मल माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति शुद्ध माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारी माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: निष्कलंक माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रिय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रशंसनीय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सुसमति की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सृष्टिकर्ता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: मुक्तिदाता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति चौकस कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्तुति योग्य कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शक्तिमती कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दयालु कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मनिष्ठ कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हमारे आनंद का मूल
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पवित्र आत्मा का मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भक्ति का उत्तम पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आध्यात्मिक गुलाब
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दाऊद का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हस्तिदंत का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ण मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संधि की मंजूषा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भोर का तारा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: रोगियों का स्वास्थ्य
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पापियों की शरण
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दुखियों का दिलासा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्तियों की सहायता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्गदूतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्म पुरखों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: नवियों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रेरितों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शहीदों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मवीरों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति पवित्र माला की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शांति की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर।

हमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास की चर्चा सुन रहे हैं। संत पापा लियो 14वें का यह पहला विश्व प्रेरितिक पत्र 25 मई 2026 को प्रकाशित किया गया। ओत्तो जेसिमा अद्वेनियंस जोरेरुम नोवारुम की 80वीं वर्षगांठ में लिखी गई संत पापा पॉल 6वें इस दृष्टिकोण को औद्योगिकीकरण के उपरांत समाज में लागू किया, जो शहरीकरण, गरीबी के नए रूपों और तेजी से हो रहे सांस्कृतिक बदलावों द्वारा पहचाना जाता था, जहां लोगों और समुदायों के भविष्य पर सवाल उठने लगे थे। संत पापा पॉल 6वें ने इस तथ्य पर विश्वास किया कि यद्यपि सुसमाचार की घोषणा, जो हमारे समय की संस्कृति और ऐतिहासिक संदर्भ की विभिन्नता में लिखी और जी गई थी, उसका संदेश पुराना अप्रचलित नहीं हुआ था। इसके बदले यह मानव के दृष्टिकोण, उसके संबंधों, अधिकार और जन सामान्य के हित के बारे में कहता है, जो अब भी अर्थव्यवस्था, राजनीति और सांस्कृतिक चुनावों को दिशा देने के योग्य है। दूसरे शब्दों में सुसमाचार की महत्वपूर्णता हमारे लिए बनी रहती है, क्योंकि यह मानवीय या अमानवीय, हमारे परिवर्तन होने वाली परिस्थितियों में स्वतंत्र या प्रताड़ना करने वाली बातों को देखने और पहचानने में मदद करती है। कलिसे की सामाजिक धर्म शिक्षा के संबंध में संत पापा पॉल 6वें की अति विशिष्ट विरासत यह रही, जब तक दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें मानवीय सम्मान विकास से बाहर रखा जाता है, तब तक ख्रिस्तीय समुदाय शांति की शाब्दिक घोषणा मात्र से संतुष्ट नहीं हो सकता है। इसके विपरीत लोग जहां हाशिए पर हैं, सुसमाचार को उन आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं पर निर्णय लेने की अनुमति देनी चाहिए, जो, जैसा कि संत पापा जॉन पॉल द्वितीय हमें बाद में याद दिलाते हैं, वास्तविक पाप की संरचनाएं बन सकती हैं। परिणाम स्वरूप विकास की प्रक्रियाओं में किसी भी व्यक्ति या लोगों को उपभोग की वस्तु स्वरूप नहीं देखा जाए। श्रोताओं, संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की समृद्ध सामाजिक धर्म शिक्षा 20वीं सदी की महान वैचारिक प्रणाली के संकट और आर्थिक वैश्वीकरण के शुरुआत के चौराहे पर है। उनका विश्व पत्र लबेरुम एक्स रेचेंस, कड़ी मेहनत करना, जो रेरुम नोवारुम के 90 सालों के प्रकाशन उपरांत लिखा गया, जिसके द्वारा कार्य पर चिंतन हेतु एक नया मार्ग खुला। यह उचित मेहनतानाओं को पूरे सामाजिक आर्थिक प्रणाली में न्याय को सत्यापित करने हेतु एक ठोस माध्यम स्वरूप प्रस्तुत करता है, क्योंकि इसके द्वारा यह प्रकट किया जाता है कि कार्यकर्ता को एक व्यक्ति के रूप में या उत्पादन में सिर्फ एक लागत स्वरूप देखना है। कार्य को एक समस्या स्वरूप ना देखा जाए जिसका निराकरण किया जाता हो, या लाभ उत्पादन के साधन स्वरूप ही, लेकिन यह व्यक्ति की एक मूलभूत भलाई, अर्थव्यवस्था का एक मुख्य क्रियाकलाप हो जिस पर पूरी सामाजिक व्यवस्था टिकी हो। कार्य के द्वारा मानव अपनी स्वतंत्रता, सृजनात्मकता और सहयोग करने की क्षमता को अभिव्यक्त करता, समाज की संस्कृति और नैतिकता के विकास में सहयोग देता है। इसके आलोक में विभिन्न तरह के कार्यों की असुरक्षा, अलग अलग कैरियर के मार्ग और प्रगति को सिर्फ कार्य क्षमता के हिसाब से नहीं बल्कि कार्यकर्ता के सम्मान के दृष्टिकोण से सही मेहनताने के अधिकार और समाज में सहभागी होने की असल संभावना की तर्ज से देखा जाना चाहिए। अपने विश्वपत्र सोलिचितुदो रे सोचियालिस जो पोपुलरुम प्रोग्रेसियो की 20वीं सालगिरह को रेखांकित करता है, संत पापा योहन पौलुस द्वितीय ने विकास की कमी के अभिशाप की पुनः जांच की। उन्होंने गरीब देशों के आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में दुनिया के उत्तर और दक्षिण के बीच लगातार और वास्तव में बढ़ते अंतर को देखते हुए असंख्य प्रयासों की विफलता को स्वीकार किया। उन्होंने आर्थिक, वित्तीय और व्यापार व्यवस्था की भी आलोचना की, जिन्हें सबसे अधिक मजबूत अर्थव्यवस्था संचालित करती है, जो संचार के हिसाब से अपने फायदे के लिए काम करते हैं, जबकि वे कमजोर अर्थव्यवस्था का दम घोट देते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सिर्फ तकनीकी ही नहीं बल्कि गंभीर नैतिक जांच भी होनी चाहिए। इस संदर्भ में व्यक्तियों, लोगों और देशों के बीच एकात्मकता और एक ठोस साझा उत्तरदायित्व के रूप में समझा गया एक सामाजिक मित्रता या राजनैतिक कार्य जो संत पापा पॉल छठवें के द्वारा प्रेम की सभ्यता स्वरूप निर्देशित किया गया। श्रोताओं, रेरुम नोवारुम के साल गिरह के अवसर पर विश्व प्रेरितिक पत्र चेंतिसिमुस आनुस ने सोवियत संघ के पतन और गणतंत्र तथा अर्थव्यवस्था बाजार विकास के संबंध में एक चिंतन प्रस्तुत किया। संत पापा योहन पौलुस द्वितीय ने संत पापा पियूस 12वें के संदेश पर जोर दिया कि कलीसिया लोकतंत्र को इसलिए महत्व देती है क्योंकि यह नागरिकों की प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित करती है। यह उन्हें अपने नेताओं का चुनाव करने और शांतिपूर्ण ढंग से उन्हें बदलने का अवसर देती है और सत्ता को कुछ खास कुलीन दलों के हाथों में जाने के एकाधिकार या आदर्शों से प्रेरित होने को रोकती है। उसी भांति कलीसिया बाजार के सकारात्मक गुण और व्यक्तिगत पहलुओं को पहचानने के योग्य होती है यदि वह नैतिक सिद्धांत के अनुरूप कार्य करती और एकात्मकता से सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती, लाभ के तर्क से प्रभावित हुए बिना अति संवेदनशीलों का परित्याग नहीं करती है। यह मुख्य रूप से कलीसिया की सामाजिक धर्म शिक्षा में एक विशेष विरासत को जोड़ती है। कार्य का सम्मान, लोगों के मध्य एकता के भाव, गणतंत्र का एक तर्कपूर्ण मूल्यांकन और बाजार अर्थव्यवस्था के बीच संबंध की सुनिश्चितता नए रूप में शोषणों के स्वरूपों, बहिष्कार और राजनीति में प्रतिनिधित्व की जांच पड़ताल हेतु निरंतर मापदंडों को प्रदान करती है। श्रोताओं, अपने सामाजिक विश्वपत्र कारितास इन वेरितास में संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने वैश्वीकरण के आलोक में पोपुलोरुम प्रोग्रेसियो की विषय वस्तु में हुए विकास का मूल्यांकन करते हुए उन्हें विस्तृत करने की चाह रखी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विकास का अभिप्राय सच्ची तरक्की, हर किसी को लाभ और वास्तविक टिकाऊपन से है। कहने का अर्थ, आर्थिक विकास सही अर्थ में सबों को सम्माहित करता हो और सृष्टि की सीमाओं का सम्मान करता हो। उन्होंने यद्यपि इस बात पर बल दिया कि समृद्ध देशों में नए प्रकार की दरिद्रता उत्पन्न हो रही है, इसके साथ ही हम बहिष्कार के विशेष रूपों को देखते हैं, जबकि अति निर्धन प्रांतें, छोटे अल्पसंख्यक जो समृद्ध उपभोक्ताओं के निकट रहते हुए अपने को अमानवीय परिस्थितियों के शिकार पाते हैं। इसके अलावा उन्होंने देखा कि नई वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली जो एक वृहद पूंजी और उत्पादन के साधनों से जुड़ी है, अपने में देशों की राजनीति शक्ति और उनके आर्थिक प्रक्रिया को प्रभावित करने से जुड़ी है। यही कारण है कि संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक क्रियाकलाप इस बात का दावा नहीं कर सकते हैं कि वे महज व्यापारिक मनोभाव के विस्तार द्वारा सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, बल्कि उन्हें चाहिए कि वे अपने को जन सामान्य की भलाई हेतु स्थापित करें, जिसके लिए राजनीतिक समुदाय की अपनी पूर्ण जिम्मेदारी है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने वैटिकन अभिलेखागार एवं पुस्तकालय के स्टाफ से बात करते हुए कलीसिया एवं दुनिया की सेवा में इन दोनों संस्थानों के मिशन के महत्व पर जोर दिया और कहा कि लाइब्रेरी सिर्फ किताबों से भरी जगह नहीं है, बल्कि रिश्तों, आदान प्रदान एवं विचारों को साझा करने की जगह भी है। सोमवार को वैटिकन में ऐतिहासिक प्रेरितिक अभिलेखागार एवं प्रेरितिक पुस्तकालय का दौरा करते हुए पोप लियो 14वें ने आक्वा कैटास्ट्रोफी एंड वंडर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने दोनों संस्थानों के मिशन एवं काम के लिए अपना सामीप्य और सराहना व्यक्त की, जिससे उन्होंने कलीसिया और पूरी मानवता के हित के लिए संस्कृति के विकास एवं फैलाव की सेवा बताया। प्रेरितिक संविधान प्रेदिकाते एवेंजेलियम नंबर 242 के अनुसार वैटिकन अभिलेखागार एवं पुस्तकालय विश्वव्यापी कलीसिया के प्रशासन से जुड़े कार्यों और दस्तावेजों को बचाकर रखने और देखभाल करने का काम करते हैं। वे कला और सीखने की एक बड़ी विरासत को इकट्ठा करने और उसे विशेषज्ञों के लिए उपलब्ध कराने का भी काम करते हैं। एक पुस्तकालय को एक आरामदायक शांत जगह के रूप में देखा जा सकता है, जबकि पोप लियो ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक किताब एक बेचैनी को जागृत करती है, इच्छा को बढ़ावा देती और खोज करने का साहस करती है। संत अगस्तीन इसके उदाहरण है। संत पौलुस का पत्र पढ़ने से हिप्पो के धर्मदोष का संदेह गायब हो गया था। संत पापा ने समझाया, लेकिन इच्छा नहीं जो अधिक मजबूत हुए, बल्कि बाइबल के ग्रंथों का अध्ययन करने से संत अगस्तीन की आत्मा खुले। उसी प्रकार पोप ने कहा, अध्ययन, संरक्षण एवं पेत्रुस के उत्तराधिकारी की किताबें उपलब्ध कराने के द्वारा आप कलीसिया एवं मानवता की इच्छा की गहराई तक पहुंचने में मदद करते हैं। इसके बिना सब कुछ जीवित ईश्वर, सत्य और प्रेम के स्रोत से दूर हो जाता है। एक प्रतीक का उपयोग करते हुए पोप ने प्रेरितिक लाइब्रेरी को एक हृदय कहा। उन्होंने समझाया, धड़कता हुआ दिल जीवन का प्रतीक है और यह दो विपरीत गतिविधियों, सिस्टोल और डायस्टोल का परिणाम है, एक संकोचन और एक विश्राम, एक केंद्र की ओर गति और दूसरा परिधि की ओर। उन्होंने कहा कि पोप की लाइब्रेरी तब तक जीवित रहती है जब तक उसका सिस्टोल और डायस्टोल बना रहता है। प्रेरितिक लाइब्रेरी का सिस्टोल है कि यह शांति, समझदारी, सम्मान और देखभाल वाली जगह बनी रहे। पोप लियो ने अपनी इच्छा जाहिर की कि प्रेरितिक लाइब्रेरी का मठ जैसा माहौल संत लूका सचित सुसमाचार के उस अंश की याद दिलाती है। यदि तुम्हें पुनर्निर्माण करना है, यदि तुम्हें संघर्ष करना है, तो पहले बैठो और अध्ययन करो। उन्होंने कहा कि एक तरफ पढ़ाई के लिए इस खजाने तक पहुंच को आसान बनाना सही है, जिसमें डिजिटाइजेशन एवं ऑनलाइन पहुंच शामिल है। दूसरी तरफ लाइब्रेरी जाकर अध्ययन करना और पुरानी प्रथा को बचा कर रखना एवं उसे बढ़ावा देना भी जरूरी है। यह सिर्फ किताबों से भरी जगह नहीं है, बल्कि रिश्तों, आदान प्रदान एवं विचारों को साझा करने वाली जगह भी है। पोप लियो ने गौर किया कि पुस्तकालय का निर्माण उसी समय किया गया था जब यह दुनिया में आम बात नहीं थी। उन्होंने कहा, इस तरह लाइब्रेरी कलीसिया की पुरानी और हमेशा नई संस्कृति, खुलेपन की गवाही देती है। प्रदर्शनी का उद्घाटन इस परंपरा की पुष्टि है। पोप ने वैटिकन अभिलेखागार एवं लाइब्रेरी के स्टाफ से इसे जारी रखने का प्रोत्साहन दिया और उन्हें चुनौती दी कि वे अतीत एवं भविष्य के प्रति वफादार रहें, अपने काम के लिए आवश्यक भाषाओं एवं तरीकों का इस्तेमाल करें तथा मेल मिलाप के नए तरीके खोजें। वैटिकन के संत पियूस 10वें सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विलानोवा विश्वविद्यालय ने कार्डिनल माइकल चर्नी को पोप लियो 14वें स्थिरता पदक के प्रथम विजेता घोषित किया। पोप लियो 14वें स्थिरता मेडल के पहले विजेता येसु संघी कार्डिनल माइकल चर्नी परमधम पीठ समग्र मानव विकास विभाग के सम्मान सेवानिवृत्त अध्यक्ष हैं। यह पदक उनकी दशकों की उल्लेखनीय सेवा एवं एक ऐसे नेता के रूप में दिया गया है जिनका जीवन इस मेडल की सबसे अच्छी झलक दिखाती है। उक्त बात विलानोवा यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष फादर पीटर डोन्यू पीएचडी ने सोमवार को यूनिवर्सिटी द्वारा 14 सितंबर को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण से थोड़ी दूर वैटिकन के साला संत पियो 10वें में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई, जिसमें पदक के पहले विजेता की घोषणा की गई।
सम्मेलन में विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के साथ कार्डिनल चर्नी और विलानोवा स्कूल ऑफ बिजनेस में नैतिकता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व संकाय निदेशक डॉक्टर मानवेला प्रिसेमुत्पायन पीएचडी और संचार विभाग के संपादक के उपनिदेशक अलेसांद्रो जिसोती थे, जिन्होंने प्रेस सम्मेलन का संचालन किया। विलानोवा विश्वविद्यालय अमेरिका में फिलाडेल्फिया के पास स्थित एक अगुस्टीनी कार्तिक संस्थान है, जहां पोप लियो चौदहवें ने 1977 में गणित में विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। विश्वविद्यालय ने बाद में उन्हें 2014 में मानविकी में डॉक्टर की मानद डिग्री प्रदान की। कार्यक्रम में अगुस्टीनी ऑर्डर के प्रायर जनरल फादर जोसेफ फरेल ओएसई की उपस्थिति पर जिसोती ने कहा कि फादर की उपस्थिति आज जिन घटनाओं पर बात हो रही है उसके पीछे की महान अगुस्टीनी प्रेरणा को दिखाती है। पदक पर बात करते हुए पहले फादर पीटर ने पोप लियो को उनके नेतृत्व, साक्ष्य और हमारे आम घर की रक्षा करने और मानवाधिकार को बढ़ावा देने के काम करने में उनकी दृढ़ता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने बतलाया कि पोप लियो चौदहवें स्थिरता पदक का मकसद किसी भी क्षेत्र के उन लोगों को पहचान देना है जिनका नेतृत्व सतत्ता के लिए एक समग्र दृष्टिकोण दिखाती है। पुरस्कार विजेताओं को ऐसे काम के लिए चुना जाता है जिनमें पर्यावरण की देखभाल, सामाजिक न्याय, कमजोर समुदायों की सुरक्षा और जिम्मेदार आर्थिक प्रबंधन शामिल हो। विलानोवा यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता कांग्रेस के दौरान हर 2 साल में दिए जाने वाले इस अवार्ड के बारे में उन्होंने कहा कि इसका मकसद नेतृत्व को प्रेरित करना है, नए शोध को बढ़ावा देना और एक अधिक न्यायपूर्ण एवं सतत दुनिया बनाने में सहयोग को प्रोत्साहित करना है। भारतीय कार्तिक धर्मदर्श सम्मेलन ने अपनी कार्यकारी समिति की 1वीं सभा के साथ एक ऐतिहासिक मील का पत्थर मनाया। सीसीबीआई के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने इस मौके को बीते कल के लिए शुक्रिया अदा करने और भविष्य के लिए नई उम्मीद एवं दर्शन का पल बताया। वियना में चल रही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की 70वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में अपने भाषण में वैटिकन विदेश सचिव महाधर्मदर्श पॉल रिचर्ड गलागर ने परमाणु तकनीकी का इस्तेमाल सोच समझ कर करने की अपील की। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो चौदहवें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास की चर्चा सुन रहे हैं। संत पापा लियो चौदहवें का यह पहला विश्व प्रेरितिक पत्र 25 मई 2026 को प्रकाशित किया गया। ओत्तो जेसिमा अद्वेनियंस जोरेरुम नोवारुम की 80वीं वर्षगांठ में लिखी गई संत पापा पॉल छठवें इस दृष्टिकोण को औद्योगिकीकरण के उपरांत समाज में लागू

किया जो शहरीकरण, गरीबी के नए रूपों और तेजी से हो रहे सांस्कृतिक बदलावों द्वारा पहचाना जाता था, जहां लोगों और समुदायों के भविष्य पर सवाल उठने लगे थे। संत पापा पॉल छाटवे ने इस तथ्य पर विश्वास किया कि यद्यपि सुसमाचार की घोषणा, जो हमारे समय की संस्कृति और ऐतिहासिक संदर्भ की विभिन्नता में लिखी और जी गई थी, उसका संदेश पुराना अप्रचलित नहीं हुआ था। इसके बदले यह मानव के दृष्टिकोण, उसके संबंधों, अधिकार और जन सामान्य के हित के बारे में कहता है, जो अब भी अर्थव्यवस्था, राजनीति और सांस्कृतिक चुनावों को दिशा देने के योग्य है। दूसरे शब्दों में सुसमाचार की महत्वपूर्णता हमारे लिए बनी रहती है, क्योंकि यह मानवीय या अमानवीय, हमारे परिवर्तन होने वाली परिस्थितियों में स्वतंत्र या प्रताड़ना करने वाली बातों को देखने और पहचानने में मदद करती है। कलिसिया की सामाजिक धर्म शिक्षा के संबंध में संत पापा पॉल छाटवे की अति विशिष्ट विरासत यह रही, जब तक दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें मानवीय सम्मान विकास से बाहर रखा जाता है, तब तक ख्रिस्तीय समुदाय शांति की शाब्दिक घोषणा मात्र से संतुष्ट नहीं हो सकता है। इसके विपरीत लोग जहां हाशिए पर हैं, सुसमाचार को उन आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं पर निर्णय लेने की अनुमति देनी चाहिए, जो जैसा कि संत पापा जॉन पॉल द्वितीय हमें बाद में याद दिलाते हैं, वास्तविक पाप की संरचनाएं बन सकती हैं। परिणाम स्वरूप विकास की प्रक्रियाओं में किसी भी व्यक्ति या लोगों को उपभोग की वस्तु स्वरूप नहीं देखा जाए। श्रोताओं, संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की समृद्ध सामाजिक धर्म शिक्षा 20वीं सदी की महान वैचारिक प्रणाली के संकट और आर्थिक वैश्वीकरण के शुरुआत के चौराहे पर है। उनका विश्व पत्र लबेरुम एक्स रेचेंस, कड़ी मेहनत करना, जो रेरुम नोवारुम के 90 सालों के प्रकाशन उपरांत लिखा गया, जिसके द्वारा कार्य पर चिंतन हेतु एक नया मार्ग खुला। यह उचित मेहनतानाओं को पूरे सामाजिक आर्थिक प्रणाली में न्याय को सत्यापित करने हेतु एक ठोस माध्यम स्वरूप प्रस्तुत करता है, क्योंकि इसके द्वारा यह प्रकट किया जाता है कि कार्यकर्ता को एक व्यक्ति के रूप में या उत्पादन में सिर्फ एक लागत स्वरूप देखना है, कार्य को एक समस्या स्वरूप ना देखा जाए जिसका निराकरण किया जाता हो, या लाभ उत्पादन के साधन स्वरूप ही, लेकिन यह व्यक्ति की एक मूलभूत भलाई, अर्थव्यवस्था का एक मुख्य क्रियाकलाप हो जिस पर पूरी सामाजिक व्यवस्था टिकी हो। कार्य के द्वारा मानव अपनी स्वतंत्रता, सृजनात्मकता और सहयोग करने की क्षमता को अभिव्यक्त करता, समाज की संस्कृति और नैतिकता के विकास में सहयोग देता है। इसके आलोक में विभिन्न तरह के कार्यों की असुरक्षा, अलग अलग कैरियर के मार्ग और प्रगति को सिर्फ कार्य क्षमता के हिसाब से नहीं, बल्कि कार्यकर्ता के सम्मान के दृष्टिकोण से सही मेहनताने के अधिकार और समाज में सहभागी होने की असल संभावना की तर्ज से देखा जाना चाहिए। अपने विश्व पत्र सोलिचितुदो रे सोशियालिस, जो पोपुलरुम प्रोग्रेसियो की 20वीं सालगिरह को रेखांकित करता है, संत पापा योहान पॉलस द्वितीय ने विकास की कमी के अभिशाप की पुनः जांच की। उन्होंने गरीब देशों के आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में दुनिया के उत्तर और दक्षिण के बीच लगातार और वास्तव में बढ़ते अंतर को देखते हुए असंख्य प्रयासों की विफलता को स्वीकार किया। उन्होंने आर्थिक, वित्तीय और व्यापार व्यवस्था की भी आलोचना की, जिन्हें सबसे अधिक मजबूत अर्थव्यवस्था संचालित करती है, जो संचार के हिसाब से अपने फायदे के लिए काम करते हैं, जबकि वे कमजोर अर्थव्यवस्था का दम घोट देते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सिर्फ तकनीकी ही नहीं, बल्कि गंभीर नैतिक जांच भी होनी चाहिए। इस संदर्भ में व्यक्तियों, लोगों और देशों के बीच एकात्मकता और एक ठोस साझा उत्तरदायित्व के रूप में समझा गया एक सामाजिक मित्रता या राजनैतिक कार्य, जो संत पापा पॉल छाटवे के द्वारा प्रेम की सभ्यता स्वरूप निर्देशित किया गया।
श्रोताओं, रेरुम नोवारुम के साल गिरह के अवसर पर विश्व प्रेरितिक पत्र चेंतिसिमुस आनुस ने सोवियत संघ के पतन और गणतंत्र तथा अर्थव्यवस्था बाजार विकास के संबंध में एक चिंतन प्रस्तुत किया। संत पापा योहान पॉलस द्वितीय ने संत पापा पियूस 12वें के संदेश पर जोर दिया कि कलीसिया लोकतंत्र को इसलिए महत्व देती है क्योंकि यह नागरिकों की प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित करती है। यह उन्हें अपने नेताओं का चुनाव करने और शांतिपूर्ण ढंग से उन्हें बदलने का अवसर देती है और सत्ता को कुछ खास कुलीन दलों के हाथों में जाने के एकाधिकार या आदर्शों से प्रेरित होने को रोकती है। उसी भांति कलीसिया बाजार के सकारात्मक गुण और व्यक्तिगत पहलुओं को पहचानने के योग्य होती है यदि वह नैतिक सिद्धांत के अनुरूप कार्य करती और एकात्मकता से सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती, लाभ के तर्क से प्रभावित हुए बिना अति संवेदनशीलों का परित्याग नहीं करती है। यह मुख्य रूप से कलीसिया की सामाजिक धर्म शिक्षा में एक विशेष विरासत को जोड़ती है। कार्य का सम्मान, लोगों के मध्य एकता के भाव, गणतंत्र का एक तर्कपूर्ण मूल्यांकन और बाजार अर्थव्यवस्था के बीच संबंध की सुनिश्चितता नए रूप में शोषणों के स्वरूपों, बहिष्कार और राजनीति में प्रतिनिधित्व की जांच पड़ताल हेतु निरंतर मापदंडों को प्रदान करती है। श्रोताओं, अपने सामाजिक विश्वपत्र कारितास इन वेरितास में संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने वैश्वीकरण के आलोक में पॉपुलोरुम प्रोग्रेसियो की विषय वस्तु में हुए विकास का मूल्यांकन करते हुए उन्हें विस्तृत करने की चाह रखी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विकास का अभिप्राय सच्ची तरक्की, हर किसी को लाभ और वास्तविक टिकाऊपन से है। कहने का अर्थ, आर्थिक विकास सही अर्थ में सबों को सम्माहित करता हो और सृष्टि की सीमाओं का सम्मान करता हो। उन्होंने यद्यपि इस बात पर बल दिया कि समृद्ध देशों में नए प्रकार की दरिद्रता उत्पन्न हो रही है, इसके साथ ही हम बहिष्कार के विशेष रूपों को देखते हैं, जबकि अति निर्धन प्रांतें, छोटे अल्पसंख्यक जो समृद्ध उपभोक्ताओं के निकट रहते हुए अपने को अमानवीय परिस्थितियों के शिकार पाते हैं। इसके अलावा उन्होंने देखा कि नई वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली जो एक वृहद पूंजी और उत्पादन के साधनों से जुड़ी है, अपने में देशों की राजनीति शक्ति और उनके आर्थिक प्रक्रिया को प्रभावित करने से जुड़ी है। यही कारण है कि संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक क्रियाकलाप इस बात का दावा नहीं कर सकते हैं कि वे महज व्यापारिक मनोभाव के विस्तार द्वारा सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, बल्कि उन्हें चाहिए कि वे अपने को जन सामान्य की भलाई हेतु स्थापित करें, जिसके लिए राजनीतिक समुदाय की अपनी पूर्ण जिम्मेदारी है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौथवे ने वैटिकन अभिलेखागार एवं पुस्तकालय के स्टाफ से बात करते हुए कलीसिया एवं दुनिया की सेवा में इन दोनों संस्थानों के मिशन के महत्व पर जोर दिया और कहा कि लाइब्रेरी सिर्फ किताबों से भरी जगह नहीं है, बल्कि रिश्तों, आदान प्रदान एवं विचारों को साझा करने की जगह भी है। सोमवार को वैटिकन में ऐतिहासिक प्रेरितिक अभिलेखागार एवं प्रेरितिक पुस्तकालय का दौरा करते हुए पोप लियो चौदहवें ने आक्वा कैटास्ट्रोफी एंड वंडर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने दोनों संस्थानों के मिशन एवं काम के लिए अपना सामीप्य और सराहना व्यक्त की, जिससे उन्होंने कलीसिया और पूरी मानवता के हित के लिए संस्कृति के विकास एवं फैलाव की सेवा बताया। प्रेरितिक संविधान प्रेदिकाते एवेंजेलियम नंबर 242 के अनुसार वैटिकन अभिलेखागार एवं पुस्तकालय विश्वव्यापी कलीसिया के प्रशासन से जुड़े कार्यों और दस्तावेजों को बचाकर रखने और देखभाल करने का काम करते हैं। वे कला और सीखने की एक बड़ी विरासत को इकट्ठा करने और उसे विशेषज्ञों के लिए उपलब्ध कराने का भी काम करते हैं। एक पुस्तकालय को एक आरामदायक शांत जगह के रूप में देखा जा सकता है, जबकि पोप लियो ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक किताब एक बेचैनी को जागृत करती है, इच्छा को बढ़ावा देती और खोज करने का साहस करती है। संत अगस्तीन इसके उदाहरण है। संत पॉलुस का पत्र पढ़ने से हिप्पो के धर्माध्यक्ष का संदेह गायब हो गया था। संत पापा ने समझाया, लेकिन इच्छा नहीं जो अधिक मजबूत हुए, बल्कि बाइबल के ग्रंथों का अध्ययन करने से संत अगस्तीन की आत्मा खुले। उसी प्रकार पोप ने कहा, अध्ययन, संरक्षण एवं पेत्रुस के उत्तराधिकारी की किताबें उपलब्ध कराने के द्वारा आप कलीसिया एवं मानवता की इच्छा की गहराई तक पहुंचने में मदद करते हैं। इसके बिना सब कुछ जीवित ईश्वर, सत्य और प्रेम के स्रोत से दूर हो जाता है। एक प्रतीक का उपयोग करते हुए पोप ने प्रेरितिक लाइब्रेरी को एक हृदय कहा। उन्होंने समझाया, धड़कता हुआ दिल जीवन का प्रतीक है और यह दो विपरीत गतिविधियों, सिस्टोल और डायस्टोल का परिणाम है, एक संकोचन और एक विश्राम, एक केंद्र की ओर गति और दूसरा परिधि की ओर। उन्होंने कहा कि पोप की लाइब्रेरी तब तक जीवित रहती है जब तक उसका सिस्टोल और डायस्टोल बना रहता है। प्रेरितिक लाइब्रेरी का सिस्टोल है कि यह शांति, समझदारी, सम्मान और देखभाल वाली जगह बनी रहे। पोप लियो ने अपनी इच्छा जाहिर की कि प्रेरितिक लाइब्रेरी का मठ जैसा माहौल संत लूका सचित सुसमाचार के उस अंश की याद दिलाती है। यदि तुम्हें पुनर्निर्माण करना है, यदि तुम्हें संघर्ष करना है, तो पहले बैठो और अध्ययन करो। उन्होंने कहा कि एक तरफ पढ़ाई के लिए इस खजाने तक पहुँच को आसान बनाना सही है, जिसमें डिजिटाइजेशन एवं ऑनलाइन पहुँच शामिल है। दूसरी तरफ लाइब्रेरी जाकर अध्ययन करना और पुरानी प्रथा को बचाकर रखना एवं उसे बढ़ावा देना भी जरूरी है। यह सिर्फ किताबों से भरी जगह नहीं है, बल्कि रिश्तों, आदान प्रदान एवं विचारों को साझा करने वाली जगह भी है। पोप लियो ने गौर किया कि पुस्तकालय का निर्माण उसी समय किया गया था जब यह दुनिया में आम बात नहीं थी। उन्होंने कहा, इस तरह लाइब्रेरी कलीसिया की पुरानी और हमेशा नई संस्कृति, खुलेपन की गवाही देती है। प्रदर्शनी का उद्घाटन इस परंपरा की पुष्टि है। पोप ने वैटिकन अभिलेखागार एवं लाइब्रेरी के स्टाफ से इसे जारी रखने का प्रोत्साहन दिया और उन्हें चुनौती दी कि वे अतीत एवं भविष्य के प्रति वफादार रहें, अपने काम के लिए आवश्यक भाषाओं एवं तरीकों का इस्तेमाल करें तथा मेल मिलाप के नए तरीके खोजें। वैटिकन के संत पियूस 10वें सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विलानोवा विश्वविद्यालय ने कार्डिनल माइकल चर्नी को पोप लियो चौदहवें स्थिरता पदक के प्रथम विजेता घोषित किया। पोप लियो चौदहवें स्थिरता मेडल के पहले विजेता येसु संघी कार्डिनल माइकल चर्नी परमधम पीठ समग्र मानव विकास विभाग के सासम्मान सेवानिवृत्त अध्यक्ष हैं। यह पदक उनकी दशकों की उल्लेखनीय सेवा एवं एक ऐसे नेता के रूप में दिया गया है जिनका जीवन इस मेडल की सबसे अच्छी झलक दिखाती है। उक्त बात विलानोवा यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष फादर पीटर डोन्यू पीएचडी ने सोमवार को यूनिवर्सिटी द्वारा 14 सितंबर को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण से थोड़ी दूर वैटिकन के साला संत पियो 10वें में आयोजित
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई, जिसमें पदक के पहले विजेता की घोषणा की गई। सम्मेलन में विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के साथ कार्डिनल चर्नी और विलानोवा स्कूल ऑफ बिजनेस में नैतिकता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व संकाय निदेशक डॉक्टर मानवेला प्रिसेमोत्पायन PhD और संचार विभाग के संपादक के उप निदेशक अलेसांद्रो जिसोती थे, जिन्होंने प्रेस सम्मेलन का संचालन किया। विलानोवा विश्वविद्यालय अमेरिका में फिलाडेल्फिया के पास स्थित एक अगुस्टीनी कैथोलिक संस्थान है, जहां पोप लियो चौदहवें ने 1977 में गणित में विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। विश्वविद्यालय ने बाद में उन्हें 2014 में मानविकी में डॉक्टर की मानद डिग्री प्रदान की। कार्यक्रम में अगुस्टीनी ऑर्डर के प्रायर जनरल फादर जोसेफ फरेल OSE की उपस्थिति पर जिसोती ने कहा कि फादर की उपस्थिति आज जिन घटनाओं पर बात हो रही है उसके पीछे की महान अगुस्टीनी प्रेरणा को दिखाती है। पदक पर बात करते हुए पहले फादर पीटर ने पोप लियो को उनके नेतृत्व, साक्ष्य और हमारे आम घर की रक्षा करने और मानवाधिकार को बढ़ावा देने के काम करने में उनकी दृढ़ता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने बतलाया कि पोप लियो चौथ में स्थित पदक का मकसद किसी भी क्षेत्र के उन लोगों को पहचान देना है जिनका नेतृत्व सतत्ता के लिए एक समग्र दृष्टिकोण दिखाती है। पुरस्कार विजेताओं को ऐसे काम के लिए चुना जाता है जिनमें पर्यावरण की देखभाल, सामाजिक न्याय, कमजोर समुदायों की सुरक्षा और जिम्मेदार आर्थिक प्रबंधन शामिल हो। विलानोवा यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय स्थित कांग्रेस के दौरान हर 2 साल में दिए जाने वाले इस अवार्ड के बारे में उन्होंने कहा कि इसका मकसद नेतृत्व को प्रेरित करना है, नए शोध को बढ़ावा देना और एक अधिक न्यायपूर्ण एवं सतत दुनिया बनाने में सहयोग को प्रोत्साहित करना है। भारतीय कार्तिक धर्मदर्श सम्मेलन ने अपनी कार्यकारी समिति की 1वीं सभा के साथ एक ऐतिहासिक मील का पत्थर मनाया। CCBI के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने इस मौके को बीते कल के लिए शुक्रिया अदा करने और भविष्य के लिए नई उम्मीद एवं दर्शन का पल बताया। वियना में चल रही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की 70वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में अपने भाषण में वैटिकन विदेश सचिव महाधर्मदर्श पॉल रिचर्ड कलागर ने परमाणु तकनीकी का इस्तेमाल सोच समझ कर करने की अपील की। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।